0: तू अपना फर्ज अदा कर गया, असि अपना फर्ज निभावांगे, तेरी रीत नू लैके चलांगे, तेरे वांगू ही अंड करावांगे।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.
2: Show mercy on it.

0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: Hey, Sink, are you there?

0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: CJMR 1320, the voice of the city.
1: कल तक जड़े केंद्र से गे बाई बाई जिन्ना यो तिलाती मैं आ जिन्नी भी कमाई कल्ला बदले आ टाइम नहीं हो यार भी आ बदले काले आ कमाने काले कर देते बगले देख देख देख देख, देख, देख।

0: बच्चों को चूस कर गुठलियां फेंकती है।
1: पेंट चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे, राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे, पंडता खाली कितड़ बहनूरे लाई आउणगियां, हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: The voice for your community, the voice of the city, CJMR 1320.

0: your home for community. CJMR 1320.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

0: तू फिर आ गया। तैनू पिछली बार कही गल याद नहीं।
1: साडा देख देख हाल हाथ जोड़ी बैठा काल बंदे सारी ही रैकेट विच ईड़े ने बाउल के नू वांगू परे सिर परचे।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं आनी। कुछ तेरिया ने, कुछ मेरिया ने, तेरा मिलना तेरा विछड़ना। तू कदे परछावे तो नेड़े, तू कदे सब तो दूर। तेरा हासा तेरा रोना, ते कदे कदे एकदम चुप होना। सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया, निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया, उच्ची उच्ची हसना सिखिया, दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया। हां खुशी है मैनू तू जिंदगी किदां जीनी है ए दसिया, पर अफसोस तेरे बिना किदां जीनी है किते ए नहीं दसिया। गल हुण संघनी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है, दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है। ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया, जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या। विद माई फर्स्ट EP एडिक्शन।

0: से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: ओ सानू मंजला ना प्यार मेरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

छड़ी न दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: मालूम है शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं हूं।

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

0: हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.